आखिर आ ही गया जिसका हम सभी को था इंतजार, उसका नाम है फ्राइडे। हेलो माइसेल्फ आरजी अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। और वो दिन जिसका मंडे से ही इंतजार होता है, आज अलार्म की आवाज भी थोड़ी कम बुरी लगती है क्योंकि दिल कहता है बस आज का दिन, फिर वीकेंड अपना ही है जनाब। लेकिन एक बात याद रखिए, फ्राइडे सिर्फ वीकेंड का गेट पास नहीं होता है बल्कि पूरे हफ्ते की मेहनत का सेलिब्रेशन होता है। अगर इस हफ्ते कुछ अचीव किया है, खुद को शाबाशी दीजिए। और अगर सब प्लान के हिसाब से हो नहीं हुआ, हर फ्राइडे एक रिमाइंडर है कि नेक्स्ट वीक एक नई शुरुआत लेकर आने ही वाला है। तो आज ऑफिस हो या कॉलेज, घर हो या सफर, फेस पर एक स्माइल रखिए, स्ट्रेस को थोड़ा साइड रखिए और अपने फेवरेट गाने के साथ फ्राइडे को फील कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। और भी बहुत सारी बातें होगी अपने आज के शो में क्योंकि आज है फ्राइडे। और अभी तो शो का आगाज हुआ है, उठिए उठिए और इस दिन का आगाज कीजिए। लौट कर आऊंगा बहुत सारी बातें करने, फिलहाल एंजॉय करते आने वाला सुपर हिट गाना। हैप्पी फ्राइडे एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: பிஸ்ஸோ கா கார்வா வித் ஆர்ஜி அதனான் ஆன் எம்ஜிஎம் 90.8 எஃப்எம்.
1: एक सवाल दिमाग में आया था, कब आखिरी बार अपने खुद को थैंक यू कहा था? अपने आप को कह रहा हूं मैं, माँ को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, ऑफिस में भी थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जिस इंसान ने हर मुश्किल में आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसे कब अप्रिशिएट किया? खुद को, उस खुद को जो हर रात टूट कर भी अगली सुबह उठ जाता है, उस खुद को जिसने लोगों के तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ चुपचाप सुन लिया और फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, उस खुद को जिसने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा सिर्फ इसलिए ताकि घर वालों को फिक्र ना हो। हम अक्सर अपनी गलतियों का हिसाब रखते हैं लेकिन अपनी हिम्मत का हिसाब कभी नहीं रखते। तो आज बस एक मिनट निकालिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और दिल से कहिए थैंक यू। इतना सब कुछ सहने के बाद भी हार नहीं मानी, थैंक यू हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए और थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। याद रखिए, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे दुनिया भी उसे महसूस नहीं करेगी। इसलिए आज का चैलेंज सिंपल है, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, सिर्फ एक बार दिल से थैंक यू बोलकर देखिए, शायद आपको अपने अंदर एक नया दोस्त मिल जाएगा।
0: किस्सों का कारवा with RJ Adnan on MGM 90.8 FM.

विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा।

0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करसगांवकर, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, मेरा आज आपसे सवाल ये है, थेरेपी के बारे में मैम आपने बताया, बट आज भी हम देखते हैं कि लोग थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए थोड़ा कतराते हैं, तो ये नजरिया कब बदलेगा लोगों का और ऐसा क्यों है?
1: देखिए कैसा होता है ना, टैबू है ये, लोगों को लगता है कि अगर थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग उन्हें पागल करार देंगे, बोलेंगे अरे ये तो पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है। तो सोसाइटी को भी संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए कि वो, और क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से तो वो टैबू बना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम कर रहे हैं, आप और मैं जो कर रहे हैं, ये टैबू को हम खत्म करने की एक कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट कोशिश है। जब हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे अगर कोई गिर जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो हम बोलते हैं कि अरे हमारे घर में हमारे एक फैमिली मेंबर का पता है हम बोन टूट गया था तो हम डॉक्टर के पास ले गए उनको। वैसे हम साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जब ले जाते हैं हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लगता हमें। तो हम और आप जो ये चर्चा कर रहे हैं तो ये एक कदम है towards you know reducing the taboo, breaking the taboo and normalizing that this situation is happening and it is very real.
0: So ma'am ne batayi hui cheeze follow kijiyega, ye sab cheeze yaad rakhiyega and tumcha hi manat ka ek prashna asel tar amala whatsapp kara 9359320080. So be safe, keep muskurana and stay tuned.

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सर आंखों पर आरजे अदनान आपके साथ इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
2: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: देखो यार, आपकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा अधिकार है, मेरा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना। सो आज के गाने की फरमाइश आई है संगम काले के तरफ से इस गाने के लिए।

हाय हाय, आज फिर जीने की तमन्ना है। संगम जी ने फरमाइश की है, लगता है फिर से जीने की तमन्ना शुरू हो गई है। होनी भी चाहिए यार, मरने की नहीं, बस जीने की तमन्ना रखी है। तो संगम जी की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। बाय द वे, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर बिंदास्त तुम्ही आम्हाला कॉल करून किंवा व्हॉट्सअप करून कळवू शकता 9359320080 या व्हॉट्सअप नंबरवर। नंबर नोट करून ठेवा, खूप कामाचा नंबर आहे 9359320080। अभी फरमाइश पूरी करते हैं संगम जी की। स्टे ट्यून।

अक्सर कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही हर्ट करती है और यही अपने शहर में हो रहा है शायद से। हेलो माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अपनी महानगर पालिका अपने शहर के रास्तों को ठीक करेंगी एंड जो गड्ढे अपने शहर में बने हैं उसको ठीक ठाक किया जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन महानगर पालिका से नहीं रखे तो किससे रखे, फिर मुझसे रखोगे आप? और एक रिपोर्ट में ऐसा आया कि खड्डे बुजण्यासाठी तकरीबन 5 वर्षात 100 कोटींचा खर्च करण्यात आलेला आहे आणि रस्ते कसे आहेत हे आपल्या डोळ्यासमोर आहे। सो ये 100 करोड गए तो गए कहां पर, एंड विकास काम भी चालू है अपने शहर में, वो तो अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये होता है ना कि किसी काम के लिए जब गड्ढा खोदा जाता है एंड वो काम होने के बाद जैसे तैसे उसको ना पैच वर्क कर ठीक ठाक करने की कोशिश की जाती है और इतना घटिया तरीके से वो कोशिश होती है कि लगता है भाई ये पैच वर्क ना किया होता तो बेटर था। आपने देखा होगा दूध डेयरी सिग्नल क्रॉस किया अमरप्रीत होटल के सामने से जो रास्ता जाता है ना एग्जैक्टली वहां से लेकर मोंडानाका ब्रिज के नीचे तक पैच वर्क किया गया था। कैसा है अगर आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना घटिया वो है। और उस वजह से ना तो ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है शहर में ना, तो कुछ गड्ढे ठीक करने के लिए उस गड्ढों के अंदर बारीक बारीक खड़ी डाली गई थी एंड वो खड़ी इतनी मजबूत थी कि एक बारिश के अंदर पूरी बहकर चली गई और पूरी खड़ी रास्तों पर आ गई है और उसके ऊपर से जब टू व्हीलर जाती है तो स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बस काम चालू है, ना पानी ढंग से मिल रहा है, ना रास्ते ढंग से मिल रहे हैं, ना गैस पाइपलाइन ठीक से काम कर रही है, ना लाइट वक्त पर आती है, सब कुछ प्रॉब्लम है। और प्रशासन कहता है कि सब चंगा सी लेकिन सब गंदा सी, यही हाल हो चुका है। आप करे तो करे कि आम आदमी, कहने को जाओ तो कहते हैं कि हम काम करने वाले हैं, शुरू है काम। अभी कैसे बारिश का मौसम है ना, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। खैर चलता है चलने दो, बल्कि चलता ही आ रहा है। आप ये बताइएगा कि आपके एरिया में रास्ते ठीक है या घटिया है। डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान, इस इंस्टा पेज पर एंड स्टेट।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर। क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
4: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक। डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
3: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
5: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर।
6: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

टैक्सी ले लेते हैं बॉलीवुड अपडेट। हेलो, आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 FM। तो बॉलीवुड अपडेट में इम्पोर्टेंट बात ये, प्रीति जिंटा का धमाकेदार कमबैक होने वाला है, वो भी 8 साल के बाद बंटवारा 1947 इस फिल्म से। उन्होंने बताया था कि पहले दिन शूट पर वो काफी नर्वस थी और सनी देओल ने उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया था। वैसे नर्वस तो होना लाजमी है क्योंकि 8 साल के बाद प्रीति जिंटा हमें फिर से एक बार बड़े पर्दे पर दिखने वाली है बंटवारा 1947 इस फिल्म में। तो इसका ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है।

और इसी के साथ इस महीने कई बड़ी फिल्में लाइनअप में है, जिसमें से आवारापन 2 आया है। यार ये फिल्म तो देखना है, इसका बहुत दिनों से इंतजार था। ये रिलीज होने जा रही है एंड लव एंड वॉर बंटवारा 1947। एंड बात करें फिल्म स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे की, भाई साहब आज तक इसके शोज हाउसफुल जा रहे है एंड मजा तो है भाई। और हाँ, उन नए नए मार्वल फैंस जो बने हैं ना, आप लोग जाना चाहते हो फिल्म देखने के लिए, तो उसके पहले जो पिछले पार्ट थे ना मार्वल के, उतने सारे देख कर जाइएगा, तभी जाके आपको समझेगा कि ये ब्रांड न्यू डे में चल क्या रहा है। वरना आप सोचोगे यार ये मकड़ी वाला आदमी क्यों ऐसी उड़िया मार रहा है यहाँ से वहां वहां से यहाँ। तो इस वजह से पिछले मार्वल के सारे पार्ट्स देखिए, तब जाके थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी आपने देखी फिल्म स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे, कैसे लगी बताइए जरा डीएम के जगह इंस्टा पर RJ Adnan इस पेज पर। बाकी स्टे ट्यून्ड।

0: ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन। एडमिशन ओपन फॉर 2026-27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017080546। MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट छत्रपति संभाजीनगर।
1: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26। MGM यूनिवर्सिटी एंड 6 सिडको। विजिट mgmu.ac.in। कॉल 9503082913।

अगर छुट्टी चाहिए आपको तो आप अपने बॉस को क्या रीजन देते हो? बीमार हो या कहीं बाहर जाना या कुछ और रीजन है, बरोबर। लेकिन ये जेंजी वाला जमाना है भाई, यहाँ पर जेंजी लोग क्या रीजन देंगे किसी को पता ही नहीं। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। और जिस तरीके से जेंजी रीजन देता है ना, तो बॉस भी उस तरीके से उस रीजन को एक्सेप्ट करता है और छुट्टी देता है। तो एक जेंजी ने अपने बॉस को छुट्टी के लिए क्या रीजन दिया पता है? और ये न्यूज ना तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। तो जेंजी का कोई जवाब नहीं भाई साहब, ये किसी का सुनते नहीं और अपने मजे में रहते। तो एक जेंजी का सोशल मीडिया पर मेल वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उसने अपने बॉस को एक मेल लिखा और कहा है कि सर जी, मेरा भी रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे छुट्टी चाहिए लंबी, ताकि मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं और इस ब्रेकअप से बाहर आ सकूं। और इस पर बॉस ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है, उसने उसको ऐसा वैसा कुछ सुनाया नहीं, उसकी हॉनेस्टी की वजह से ना तो उसको छुट्टी दे दी इतने दिनों की। तो यार एक बात तो ये जेंजी लोग कब क्या कुछ करेंगे कुछ पता नहीं, और इनका तो कोई जवाब है ही नहीं, और किसी से डरते भी नहीं भाई। वरना एक मिलीनियर्स लोग और 90s किड्स अपने बॉस को ऐसा मेल लिखने के पहले 100 बार सोचेंगे कि यार ब्रेकअप के बारे में लिखकर मैं छुट्टी कैसे मांगू, खुद ही तर्क वितर्क बनाएंगे कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन ये जेंजी लोग ना तो सबसे हटके है यार, और बॉस को भी मानना पड़ेगा कि लीव अप्रूव कर दी उन्हें विदाउट एनी क्वेश्चनिंग के। वैसे आपने भी छुट्टी के लिए क्या कुछ अजीबोगरीब तरीके से रीजन दिए अपने बॉस को, जरा बताइए मुझे डीएम करके इंस्टाग्राम पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। और उसके बाद आपको छुट्टी मिली है या नहीं ये भी बताइएगा, और सुनते रहिएगा।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute of Chhatrapati Sambhaji Nagar.
1: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
2: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatat new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
3: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 950-308-2913.
4: Scale A minor.

0: बड़े सा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NC3, छत्रपती संभाजीनगर.
1: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा.
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM University, N6 SIDCO. Visit mgmu.ac.in. Call 9503 08291.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: पीछे।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM साथ है।

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: जांबाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा MGM 94 Native FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए MGM 94 Native FM, साथ है तो बात।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय कुछ खास होता है, दिन भर के भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए सुकून की सांस ले रही हो। यही वो समय है जब हम अपने दिन को याद कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं और आने वाले कल के लिए नई उम्मीदें जुटा सकते हैं। अगर आज आपका दिन

ही हमारी शाम को यादगार बना देता है। तो आज की शाम को खुशियों, पॉजिटिव सोच और अच्छे एहसासों से भर दीजिए, क्योंकि आप एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी डिजर्व करते हैं। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, मतलब ब्रेक लेती हूँ यार। अब आप कहीं मत जाना, सुनते रहना अमेजिंग गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM साथ।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को छत्रपति संभाजीनगर.
1: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंट ची हमी सुद्धा.
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503 08 2913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजू मनीषा आपके साथ। हम अक्सर दूसरों से बातें करते हैं, उनके सुख दुख सुनते हैं, उनकी परेशानियां समझते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खुद से बात की है? जी हाँ, कभी कभी खुद के साथ कुछ पल बिताना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने दिल से पूछिए कि ये कैसा महसूस कर रहा है, क्या चीज़ आपको खुश करती है, क्या बात आपको परेशान कर रही है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। कई सवालों के जवाब हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही मिलते हैं। दिन भर की भागदौड़ में बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए, अपने मन की सुनिए, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर समझते हैं तब आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। याद रखिए, सबसे खास रिश्ता आपका खुद के साथ होता है, इसलिए खुद से बात कीजिए, खुद को समझिए और अपनी छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए। ऐसे खूबसूरत सोच के साथ अब बढ़ते हैं आगे कुछ शानदार गानों की ओर। आप बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में हम अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, कभी परिवार के लिए, कभी दोस्तों के लिए, तो कभी अपने काम की जिम्मेदारियों के लिए। लेकिन आज का एक छोटा सा सवाल है, आखिरी बार आपने खुद को कब ट्रीट दिया था? याद नहीं आ रहा ना? जरूरी नहीं कि ट्रीट बहुत बड़ी हो, कभी अपनी पसंद की चॉकलेट खाना, कभी एक छोटा सा आइसक्रीम ब्रेक लेना या फिर अपनी फेवरेट मिठाई का मजा लेना भी एक खूबसूरत ट्रीट हो सकती है। कभी कभी ये छोटी छोटी खुशियां हमारे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आती है और सच कहे तो हम सब इसके हकदार है, क्योंकि दिन भर की मेहनत, भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बीच खुद को थोड़ा प्यार देना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर आज आपका दिन अच्छा गया है तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, और अगर दिन थोड़ा मुश्किल रहा है तो भी खुद को स्वीट ट्रीट जरूर दीजिए, क्योंकि हर दिन के अंत में आप एक मुस्कान डिजर्व करते हो। तो क्यों ना आज खुद के लिए कुछ मीठा हो जाए, आखिर खुशियों का स्वाद भी थोड़ा मीठा होना चाहिए। इसे मीठी सी बात के साथ बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग गानों की ओर, ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कई बार हम अपने दिल की बातें अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, हमें लगता है कि कोई समझेगा नहीं या फिर शायद ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि दिल की बात जुबान पर लाना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपनी भावनाएं, अपनी खुशियां और अपने डर या अपनी परेशानियां किसी भरोसेमंद इंसान के साथ बांटते हैं तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल पर रखा कोई बोझ धीरे धीरे कम हो रहा हो। हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है, कभी कभी मैं ठीक नहीं हूँ कहना भी हिम्मत की बात होती है। अपनी बात कहना कमजोरी नहीं बल्कि खुद का ख्याल रखने का एक तरीका है। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। किसी दोस्त से, परिवार के किसी मेंबर से या ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो। कई बार सिर्फ सुनने वाला एक अच्छा इंसान भी बहुत फर्क पैदा करता है। याद रखिए, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखभाल जरूरी है, वैसे ही मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है और उसकी शुरुआत होती है अपनी बात खुलकर कहने से। तो आज अगर दिल में कोई बात है तो उसे कह दीजिए, शायद वही बात आपके मन को सुकून दे। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर, ओनली ऑन MGM 90.8 FM साथ है।

0: आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और also MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University Institute of Chhatrapati Sambhajinagar.
1: Cosmetic Technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech Cosmetic Technology sathi MGM University madhe Basic and Applied Sciences cha antargat aajach aapla pravesh nishchit kara.
2: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatach new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companyanmadhe placement chi hami suddha.
3: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में कभी कभी ऐसी बातें और परेशानियां आ जाती है जो हमारे मन पर भारी पड़ने लगती है। हम बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचने लगते हैं और धीरे धीरे मन थका हुआ सा महसूस करने लगता है। ऐसे समय में एक छोटा सा तरीका आपकी मदद कर सकता है। एक कागज लीजिए और उस पर अपनी सारी परेशानियां, डर, टेंशन या जो भी आपके मन में चल रहा है उसे लिख दीजिए। जो बात किसी से कह नहीं पा रहे हो उसे उस कागज पर उतार दीजिए। बिना सोचे बिना रुके बस दिल की बात लिख डालिए। जब सब कुछ लिख ले तो उस कागज का एक हवाई जहाज बनाइए और उसे खुले आसमान में उड़ा दीजिए। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन ऐसा करने से मन को एक एहसास मिलता है कि आपने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया है। कई बार समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें अपने अंदर दबा कर रखने के बजाय बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और लिखना अपने मन की बातों को समझने का एक आसान और खूबसूरत तरीका है। तो अगर आज आपके मन में कुछ चल रहा है तो उसे अपने दिल में कैद मत कीजिए। एक कागज उठाइए, अपनी बात लिखिए और फिर उसे हवा के साथ उड़ा दीजिए। कौन जाने उस उड़ते हुए कागज के साथ आपका थोड़ा सा तनाव भी उड़ जाए। इसी प्यारी से सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग गानों की ओर। ओनली ऑन एमजी 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आर्ज मनीषा आपके साथ। हम अपनी जिंदगी में बेहतर बनने के लिए बहुत कुछ करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, मेहनत करते हैं, गोल्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, वो है खुद को महसूस करना। जरा एक पल रुकिए और अपने शरीर और मन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या आपका शरीर थका हुआ है? क्या आपका मन शांत है या किसी बात को लेकर परेशान है? हमारा शरीर और मन हमें हर दिन कुछ ना कुछ संकेत देता है, लेकिन भागदौड़ में हम अक्सर उन्हें सुन नहीं पाते। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। कभी कुछ मिनट शांति से बैठ जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने मन में चल रहे विचारों को महसूस कीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका मन शांत होता है तो हर शरीर संतुलित महसूस करता है, तब फैसले भी बेहतर होते हैं, काम में भी ध्यान लगता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी ज्यादा

खूबसूरत लगने लगती है। याद रखिए, बेहतर नतीजे पाने की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से होती है। जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट और सुकून महसूस करेंगे। तो आज कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपने शरीर को सुनिए, अपने मन को समझिए और खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप सुनते रहिए MJ मैरी पोनी रिफम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। और अब आ गया है वो पल जब हमें आपसे कुछ देर के लिए कहना पड़ेगा अलविदा। आज का ये खूबसूरत सफर यही तक था, लेकिन आपकी मुस्कान, आपका साथ और आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। उम्मीद है कि आज का समय आपके लिए खुशनुमा रहा होगा और हमारी बातें आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आई होगी। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को संजो कर रखिए, अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ अच्छे पल बिताइए, और सबसे जरूरी खुद का भी ख्याल रखिए। अगर दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए, और अगर दिन अच्छा रहा हो तो उस खुशी को अपने साथ आगे लेकर जाइए, क्योंकि हर नई शाम अपने साथ सुकून, उम्मीद और एक नई शुरुआत का मौका लेकर आती है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर पल का आनंद लीजिए। हम फिर मिलेंगे नई बातों, नए गानों और नए उत्साह के साथ। आप तब तक कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

अटैक से ले लेते हैं बॉलीवुड अपडेट। हेलो, आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ एमजीएम 90.8 एफएम। तो बॉलीवुड अपडेट में इम्पोर्टेंट बात ये, प्रीति जिंटा का धमाकेदार कमबैक होने वाला है, वो भी 8 साल के बाद बंटवारा 1947 इस फिल्म से। उन्होंने बताया था कि पहले दिन शूट पर वो काफी नर्वस थी और सनी देओल ने उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया था। वैसे नर्वस तो होना लाजमी है क्योंकि 8 साल के बाद प्रीति जिंटा हमें फिर से एक बार बड़े पर्दे पर दिखने वाली है बंटवारा 1947 इस फिल्म में। तो इसका ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है और इसी के साथ इस महीने कई बड़ी फिल्में लाइनअप में है, जिसमें से आवारापन 2 आया है। यार ये फिल्म तो देखना, इसका बहुत दिनों से इंतजार था। ये रिलीज होने जा रही है एंड लव एंड वॉर बंटवारा 1947। एंड बात करें फिल्म स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे की, भाई साहब आज तक इसके शोज हाउसफुल जा रहे हैं एंड मजा तो है भाई। और हाँ, उन नए नए मार्वल फैन जो बने हैं ना, आप लोग जाना चाहते हो फिल्म देखने के लिए, तो उसके पहले जो पिछले पार्ट से ना मार्वल के उतने सारे देख कर जाइएगा, तभी जाके आपको समझेगा कि ये ब्रांड न्यू डे में चल क्या रहा है। वरना आप सोचोगे यार ये मकड़ी वाला आदमी क्यों ऐसी उड़िया मार रहा है यहाँ से वहां वहां से यहाँ। तो इस वजह से पिछले मार्वल के सारे पार्ट देखिए, तब जाके थोड़ा समझ में आ जाएगा। बाकी आपने देखी फिल्म स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे, कैसे लगी बताइए जरा डीएम के जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस पेज पर। बाकी स्टे ट्यून।

आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन

अक्सर कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ही हर्ट करती है और यही अपने शहर में हो रहा है शायद से। हेलो माय सेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अपनी महानगर पालिका अपने शहर के रास्तों को ठीक करेंगी एंड जो गड्ढे अपने शहर में बने हैं उसको ठीक ठाक किया जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन महानगर पालिका से नहीं रखे तो किससे रखे, फिर मुझसे रखोगे आप? और एक रिपोर्ट में ऐसा आया कि खड्डे बुजण्यासाठी तकरीबन 5 वर्षात 100 कोटींचा खर्च करण्यात आलेला आहे। आणि रस्ते कसे आहेत हे आपल्या डोळ्यासमोर आहे। सो ये 100 करोड़ गए तो गए कहां पर, एंड विकास काम भी चालू है अपने शहर में, वो तो अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये होता है ना कि किसी काम के लिए जब गड्ढा खोदा जाता है एंड वो काम होने के बाद जैसे तैसे उसको ना पैच वर्क कर ठीक ठाक करने की कोशिश की जाती है और इतना घटिया तरीके से वो कोशिश होती है कि लगता है भाई ये पैच वर्क ना किया होता तो बेटर था। आपने देखा होगा दूध डेयरी सिग्नल क्रॉस किया अमरप्रीत होटल के सामने से जो रास्ता जाता है ना एग्जैक्टली वहां से लेकर मोंडाना का ब्रिज के नीचे तक पैच वर्क किया गया था। कैसा है अगर आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना घटिया वो है। और इस वजह से ना तो ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है शहर में ना तो कुछ गड्ढे ठीक करने के लिए उस गड्ढों के अंदर बारीक बारीक खड़ी डाली गई थी एंड वो खड़ी इतनी मजबूत थी कि एक बारिश के अंदर पूरी बहकर चली गई और पूरी खड़ी रास्तों पर आ गई है और उसके ऊपर से जब टू व्हीलर जाती है तो स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बस काम चालू है, ना पानी ढंग से मिल रहा है, ना रास्ते ढंग से मिल रहे हैं, ना गैस पाइपलाइन ठीक से काम कर रही है, ना लाइट वक्त पर आती है, सब कुछ प्रॉब्लम है। और प्रशासन कहता है कि सब चंगा सी लेकिन सब गंदा सी, यही हाल हो चुका है। आप करे तो करे कि आम आदमी, कहने को जाओ तो कहते हैं कि हम काम करने वाले हैं, शुरू है काम। अभी कैसे बारिश का मौसम है ना, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। खैर चलता है, चलने दो, बल्कि चलता ही आ रहा है। आप ये बताइएगा कि आपके एरिया में रास्ते ठीक है या घटिया है? डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: अधनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: जब नौकरी लगी थी तो लगा था दुनिया जीत ली है, एक अलग तरीके का एहसास था। लाखों की भीड़ से निकलकर अपनी पहचान बनाना एक बड़ी उपलब्धि लगा था। लेकिन आज जब नौकरी करते हुए वक्त बीत रहा है तो जीवन में बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। दूसरों को छोड़ो, खुद के लिए समय नहीं मिलता। दोस्तों को लगता है नौकरी पाकर हम बदल गए, अपनों को लगता है कि हम में पैसों का घमंड आ चुका है। लेकिन पैसा, पद और प्रतिष्ठा से परे हम हर दिन कुछ तो है जो खोते जा रहे हैं। इसका हिसाब कोई करता ही नहीं है। अगर आपने किया तो आपकी भी जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी। तो वक्त रहते हिसाब करते रहिएगा।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है।

0: फिर
1: क्या आप ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और ऑल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट छत्रपती संभाजीनगर.
2: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजीच्या UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा. BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM यूनिवर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
3: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल. शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंट ची हमी सुद्धा.
4: ऍडमिशन ओपन फॉर 2025-26. MGM University and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहाँ आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले, तो आइए MGM University के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहाँ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620.

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM साथ है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: आ गई। वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।